जित से भी है सुख पाई है सो साहब सदा संभालियो जित किता पाए अपना साकाल बुरे को कालिए मंदा मुन्ना किसी दिन बिनदर ने हालिए जो साहब नाना हरिए।

सैदा सैदा बल्ले हारे, सैदा सैदा बल्ले हारे सचिया, सैदा सैदा बल्ले हारे तदियागे यारे, दास हमारी वायर तदियागे यारे, दास हमारी वायर जियो बेंड सब तेरा, जियो बेंड सब तेरा सचिया बादशाह, जियो बेंड सब तेरा कहुनानक सब तेरी वड़ी आई वायर, कहुनानक सब तेरी वड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा, ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह, कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रंग परंग ने कंजापन करते बा अंदर दियो सुखी जाने ला सब तेरे बस तेरा कर पला तेरा कर आनंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप।

साहिब इकबाल सतगुरु जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर दीन दुनिया दे मालक दीना बंधु दीना नाथ हाबे हयात सतगुरु धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाहियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरु कलगी धर साहिब जी साहिब धन धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दियां दे पावन पवित्र अस्थान तखत सचखंड श्री हरिमंदर श्री हजूर साहिब जी विखे आप जी बड़ी भावना दे नाल गुरु गरीब नवाज साहब जी के चरणों के नमस्तक हो रहे हो। सचखंड श्री हजूर साहिब जी जिथे श्रीमान संत ग्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी पिंडरां वालिया ने एक बार कथा विच वचन किया सी कि गुरु कलगी धर साहब जी के पावन स्थानों ते जिहड़ा भावना धार करके जावे कहिंदे जे कोई डरपोक है ना जिन्हों लगता कि मैनू संसार के जीवन का डर बड़ा है जदों दखणी गुरु के प्यारे सिख हजूर गुरु कलगी धर जी नू बंदना करके महल्ले ते निकलते ने जां कौतक वरताउंदे ने जां होर इतियादक जिहड़े चोज करदे ने कहिंदे उहनां नू भावना नाल देखो अंदरों जिहड़ा डरपणा इहनां खत्म हो जाएगा क्योंकि इत्थे है ही वह गुरु के प्यारे जान जिन्हां ने गुरु कलगी धर दा खुशा पाया है और इन्हां दे कोल डर की खालसा जी मात लोग ताईं डरदा है भाव जिन्हां ने गुरु कलगी धर जी दे बचना की पालना की उन्हां तो किहड़ा संसार का जीव है जिहड़ा अड़ सकदा है जी। सो आप जी तखत सचखंड श्री हजूर साहिब जी विखे बड़ी भावना दे नाल गुरु कलगी धर जी दे अस्थाना ते पावन दीवाना दे विच हाजिर होए हो। गुरु खालसा जी गुरु कलगी धर साहिब जी महाराज सजे हुए हैं और महाराज की शरण विच बड़े गुरु के प्यारे जन आ रहे ने जिथे गुरु के प्यारे जनों नू महाराज सिख बेनती करते ने कि पातशाह जी जिहड़े वल छल हुंदे ने जां संसार दे विच किसे जीव नू ठगिया जांदा है जां महाराज जिहड़े जीव किसे दे पिछे लग करके अपना आपा बर्बाद कर बैंदे ने सब कुछ खत्म कर बैंदे ने उन्हां दे ताईं गुरदेव तुहाडा की फरमान है की उपदेश है। फिर आखिया हजूर होर गुरु के प्यारे जनां ने भी बेनती की महाराज सच्चे पातशाह कोई बेदनता रूप बाणी उचारो जिहदे नाल जदों तुहाडी याद आवे हिरदे दे विच किते भी होईए तुहाडे चरणां विच बिने बेनती कर सकीए एहो जी भावना नूं लै करके गुरु कलगी धर साहिब जी महाराज जो तीर भाव दरियाओ है सतलुज महाराज उहदे किनारे सजे हुए हन जिथे अज गुरद्वारा श्री बिभौर साहिब जी विखे है। महाराज जियां ने अज दे दिन खालसा जी संबत 1755 अर्ध सहस फुन तीन कहजै भादरव सुधी अष्टमी रविवारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सतगुरु गुरु कलगी धर साहिब जी ने 1753 ईस्वी नूं जो भादो सुधी अष्टमी सी गुरदेव जी ने ऐतवार वाले दिन पावन गुरबाणी उचारी है केड़ी भाई इत श्री चरित्रो पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भुप संबादे 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त आफजू। महाराज गुरु कलगी धर साहिब जी ने पावन चरित्र सानू बख्शिश कीते उपरंत चौपाई साहिब जी की पावन गुरबाणी दे नाल महाराज ने संपूर्णताई की है। खालसा जीओ जिवें किसे राजन दा पुत्तर किसे तख्त उत्ते शोभा पाउण दे लई जदों तैयार हुंदा है उहदे जिहड़े पैरोकार होया करदे ने जां जिहड़े विद्वान पुरश होया करदे ने उहनां नूं बुलाया जांदा है आख्या जांदा है इस राजन दे पुत्तर नूं
ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਣ ਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾ ਖੁਸ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਵਣ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 405 ਰਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੇਗ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਬੇਗਮ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹੁਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਗਈ, ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਖੌਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 405 ਚਰਿੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਖਿਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਚਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਬਚਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਸੰਸਾਰੀ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 405 ਰਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਿਆਣਪ ਹੋਣੀ, ਚਤੁਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਅਕਲ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 365 ਚਰਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ 40 ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਲ 405 ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਇਤਿਆਦਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗਹਿਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡਿਆ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਰਤੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਥਿੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਥਿੜਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ 405 ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਕੀ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਜਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਿਆ,
अपने मथे ते हाथ मारदा फिर आत्महत्या कर लेंदा। खालसा जी, गुरु कलगीधर साहब जी ने 300 साल पहला लिख दिता, पर आप जी हैरान होवोगे पिछे जे खबर भी छपी सी लुधियाणे दे विच इवें होया, एक बाप ने शराब दे विच धुन हो करके अपनी बच्ची की पत लुट लई, सुबह उठ करके अपने गोली मार के मर गया, एडी शर्म आई। गुरु कलगीधर साहब जी महाराज का कला कला बोल सच है। जे कोई शंका करे खालसा जी, ओ गुरु का सिख की ओ ते अपनिया कुलां दा नाश करवाउण वाली गल है। धन गुरु कलगीधर साहब जी महाराज ने जेडे ये 405 खालसा जी दरसाए, ये अपने बच्चों नूं भी पढ़ाइए, आप भी पढ़िए खालसा जी, गुरु कलगीधर की अत्यंत खुशी होवेगी। फिर सतगुरु गुरु कलगीधर साहब जी महाराज जी ने दरसाया 3 वस्तुआं, एक बिसियर ते एक बिछू और एक बेसबा, एक कदे किसे जीव दे मित नहीं होंदे, इन्हां तो बच के गुरु के प्यारे ने रहना है। सो साहेब गुरु कलगीधर जी ने फिर चौ पई साहेब जी की पावन गुरबाणी ते अंत संपूर्णताई की है। जिस चौ पई साहब जी नूं असीं पढ़दे हाँ, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपार। और महापुरख जन क्या करते सन, सतगुरु जीओ आप जी दे चरणा दे विच साडा मन टिकिया रवे, साडी सदा ही बेनती तुहाडे पास होवे। और जदों किते विद्वान पुरश पावन कथा करन लगन जां गुरु के प्यारे नेमी गुरु दियां विचारां करन लगन, पहले समयां दे विच एक चौपाई साहब दा पाठ चौंकड़ा लगा करके करिया करदे सन। एक गुरु दे चरणा विच बेदनता बेनती हो जांदी सी, दूजा कथा दा रस बड़ा दीर्घ वधदा सी और आनंदमई खेड वरत जांदी सी। और जिथे हिंद मत दे विच 108 मणकियां दी माला है, और उत्थे ही गुरदेव जी दी जिहड़ी पावन चौपाई साहब जी दी बाणी है भाई, इस दे विच 27 पौड़ियां हन, जिन्हां दे 4-4 बंद भाव 108 हन पंक्तियां। जदों भी गुरु का प्यारा जन भावना दे नाल जिथे मुक्त मार ग्रंथ जो प्रतन है उत्थे विच लिखिया है कि जदों कोई चौपाई साहब जी नूं 40 दिन सूरज दे उदय होण तो पहला पहला, सूरज दे चढ़न तो पहला पहला पढ़दा है, तां गुरु गरीब परिवार गुरु कलगीधर साहब जी 41वें दिन वड्डी खेड वरता दिंदे ने भाई, उहदी बेनती नूं स्वीकार करदे ने भाई। सो साहिब गुरु कलगीधर साहब जी महाराज जिया ने फिर इहदा सार कढ़िया अखीर ते, जिवें कानड़ा राग दा अखीर विच गुरु गरीब परिवार जी ने सार कढ़िया, सुखमणी साहब जी दी अखीर विच जिस मन बसिया सुने लाए प्रीत ए सार कढ़िया, इवें चंडी दी वार दे विच अखीर दे विच गुरु कलगीधर जी ने सार कढ़िया। इवें खालसा जीओ गुरु गरीब परिवार साहब जी ने पावन चौपाई साहब जी का भी सार कढ़िया है। सार की है, महाराज ने अड़िल शब्द नूं गायन कीता, सुने गोंग जो जाहे सुरसना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भौ निकटना तिन नरके रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई जो कहे। एक बारी भावना दे नाल कोई चौपाई साहब जी की पावन गुरबाणी पढ़े, और जेड़ा पढ़ता है वो जेड़ा सुन लवे गूंगा भाई, सुने गुंग जो जाहे की जाहेगी भाई, जेड़ी उहदी रसना दे विच बड़े लंबे समय तो अनसमर्था सी, जेड़ा बोल नहीं सकता सी वो चले जाएगी, उन्हों बोलन की समर्था मिल जाएगी। गुरु कलगीधर जी कृपा करते ने, फिर उहदे मुख विच महाराज आप कृपा करके वरत के बुलाउंदे ने, ज्यों बुलाव हो तो नानक दास बोले वाली खेड वरतदी है। खालसा जी, वह सुनन दे नाल पढ़न दे नाल अनेकां दुखां दा नाश होण दा ये पावन चौपाई साहब जी का महात्म है। जिथे एक विदेशी स्टेफन हॉर्नक जिहड़ा एक बहुत वड्डा विद्वान होया, उन्हें दी ब्लैक होल थ्योरी दे विच ना बड़ा सोहना लिखिया, वह कहिंदा कि जिहड़ा सूरज है वह जमीन नूं अपने वल खिंच रहा है, जमीन सूरज नूं अपने वल खिंच रही है, कुछ समय समय दे नाल बदलदिआं बदलदिआं एक दिन इस सृष्टि का अंत होवेगा, जां सृष्टि दे विच इदां होवेगा। और उन्हों विद्वानां ने बड़ी वड्डी मानता दित्ती, पर सतगुरु गुरु कलगीधर साहब जी 300 साल ही पहला कह गए, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा, जब आकरख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह धर सब हो। महाराज, जिन्हां भी देहां हन, जिन्हें भी शरीर हन, मात लोक विच वास रहे महाराज,
कोई पंछी है कोई जीव जानवर है, एक दिन समा आवेगा सारे मिल जावन के। महाराज धरती जेड़ा अपना वेग है, सूरज जेड़ा है, चंद है, आखर नू एक हो जाणगे। ये साहिब दियां ने खालसा जी अज तो कई समा पहला कह दिता। स्टेफन नू सारे जाणिया ने मानता दिती के बई बड़ी वड्डी गल कर गया और उन्हूं पुरस्कार दिते गए। पर साहिब धन गुरु कलगीधर जीआं ने अज तो किन्ना समा पहला गुरसिखां दी झोली दे विच इह अनमोल पावन गुरबाणी दी दात पाई है। मैं गुरमुख गुरु कलगीधर जी का अनमाणा जिहा सिख होण ते बेनती करदा है, अपने घरां दे विच असी जरूर बर जरूर इन्हां जिहड़े 405 चरित्रहान इन्हां नूं प्रेमा भावनी दे नाल वाचीए। जदों असी अपने बच्चे नूं दसांगे ना पुत्तर अगे खूह है ये कोल नहीं जाना तिलके विच डिग पवेगा, वह सुचेत होवेगा। जदों बच्चे नूं दस्या ही नहीं अगे खूह है और वह अणजाण हो करके अगे जाएगा तो डिग पवेगा। भाई गुरमुखो गुरु कलगीधर साहब जी महाराज जी ने यह पावन दया के घर आन करके जिहड़ी पावन बाणी उचारी है इस विच काम दे उत्ते महाराज ने सानू समर्था बख्शिश की है। किवें जीव काम तो बच सकता है, जिन मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बलीरे, जिन पंच मार बेदार गुदारे सो पूरा एह कलीरे। गुरु कलगीधर साहिब जी महाराज आप जैसा जगत विच कोई सानी नहीं। महाराज जो पावन दात आप जीआं ने सानू बख्शिश की है, जिथे हिंद मात दे विच कामता दे उपर उन्होंने बड़े सरोत्र लिखे ने और जदों उन्होंने को पढ़ता वह कहिंदे इहदे तो वड्डी कोई चीज़ नहीं संसार विच। ते साडे लोग जदों गुरबाणी पढ़दे ने असी तर्कवादी होए हाँ, शंका ही करी जाने हाँ। सतगुरु गुरु कलगीधर जी सानू समत बख्शिश करन। आओ जिवें गुरु रामदास साहिब जी महाराज सजे हुए हन पातशाह जी दे पास, गुरु कीआं सिख संगतां बड़ी प्रेमा भावनी दे नाल चल के आ रहीआं ने। ओ पावन कथा जिवें आप जी ने कल दे दीवाना विच बड़े ही सत्कार योग बड़ी ही प्यारी सत्कारी रसना ज्ञानी जी ज्ञानी सुखविंदर सिंह जिया के मुखारबिंद तो सरवण की है। आओ गुरु गरीब नवाज साहिब जी की जिहड़ी पावन अगे कथा है बड़े प्रेमा भावना दे नाल असी सरवण करिए और पावन श्री चौपाई साहिब जी और चरित्रो पख्याण की पावन गुरबाणी की संपूर्णता दिवस दियाँ आप सब संगतां नूं बहुत बहुत वधाइया होवन जी। आओ बड़े प्रेम दे नाल कानड़ा राग की पावन गुरबाणी सरवण करना कर

0: हे गुरु गरीब नवाज हरी परमात्मा जिड़ा जरे जरे दे विच वसिया होया है घट घट मैं हर जू बसै जा घट घट की अंतर दी जानन वाला वाहिगुरु उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे गुणा नू जिड़ा जीव गावे जगदीश जगत दा दीश ईश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख अंतरजामी महाराज तेरे गुणा नू भावें शेष नाग वर्गा जे दियां हजारां जुबाना सन भावें दो फाड़ जुबाना दे नाल किन्नियां जुबाना गिणियां जांदियां ने महाराज नित नवा नाम लै करके तेरे गुणा नू गाउंदा है पर वाहिगुरु तेरे नावां दा तद भी अंत नहीं पातशाह तू किड्डा समर्थ है महाराज महाराज आप जी समर्थ हो साडी मत थोड़ी है असी कुछ बयान नहीं कर सकते असी ते आप जी दे सागर रूपी समुद्र रूपी जेड़ा दरियाओ महाराज तुहाडा सोमा है ना बाणी दा ओदा आनंद माण सकते हाँ तरत पताल आगास जिन्ने भी हन ये सारे ही वाहेगुरु कह रहे हन असी ते वाहेगुरु जी ये निघे आनंद नू मानन दा कुछ यतन कर सकते हाँ प्रयत्न कर सकते हाँ साडी कीती हुई कोशिश गुरु गरीब नवाज आप दया दे घर विच आन के पूरी करदे ने भाई गुरमुखो जदों असी भावना दे नाल चलदे आ ना कल भी बेनती कीती सी घर विच बैठे होवो पक्खा भी चलदा होवे ना उहदे फर घूमण ते भी तुहानूं इंज अहसास होवेगा जिवें वाहे गुरु कह रहे होवे जिवें कोई माई बहुत ब्रह्मलीनता विच चले गई उह पाथियां पाथी सी जदों उहदे हत्थां दी आवाज आउंदी ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਕੁੱਤਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰਾਇਆ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਜੇ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਜਦੋਂ ਟੋਕਾ ਵੀ ਗੇੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਹਗੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਸਨਾ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ
1: ਏਕਾ ਜੀਹ ਕੀਚੈ ਲਖ ਬੀਸ
0: ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 20 ਰਸਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਦ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤਦ ਸਫਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇੰਝ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਜਪਸਵੀ ਤਪਸਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਿਓ ਬੰਨਿਓ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ संत बाबा ईशर सिंह साहिब दी राड़े वाले वो आप एक दीवान विच गए ते दीवान विच आख्या संगत जी बड़े बुलारियां ने तुहानू गुरु का इतिहास सुनाया मैं बचन करा गुरु की शरण दे विच कोई कुत्ता बिल्ला चोर नहीं आउंदा इत्थे सारे ही इंसान आउंदे ने और जिहड़े इंसान प्राणी गुरु की संगत विच आए ने इन्हां दा मेन मनोरथ की है आख्या प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कि तुक फकड़े सा मुकदी चली रहन ए रैन मुकदी जा रही है ए जिहड़ा हीरे जैसा जन्म है ए कौड़ियां दे पा अजाई जाई जा रहा है हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए वाहिगुरु जी दया करनी ए रसना सदा ही तुहाडे गुणा नू गाउंदी रहे
1: जप हर हर शब्द जपीस
0: वाहिगुरु जी दे शब्द नू हरी हरी परमात्मा जी नूए हर ओ अकाल पुरख वाहिगुरु ते हर हरने जोग जेड़े सारे दुखा नू हर लेंदा है कृपा करके मालक दया दे घर विच आन करके कृपा करदा है ओ अकाल पुरख अंतरजामी ऐसी डाढ़ी अपार कृपा करदा है भाई जेड़े साडे रोग हन अग पाप हन उन्हां नू हरण दी क्षमता रखण वाला है वाहिगुरु जप हर हर शब्द जपीस महाराज जिन्हां ने अपने मुख विचों जपिया तेरा नाम सतगुरु जी उन्हां दी जुग सारे संसार विच शोभा हुंदी है जिन्हां दे मुख विचों तेरा नाम निकलदा है वह मुख तन हन उन्हां मुखां नू मेरी नमस्कार उन्हां चरणां नू नमस्कार जेड़े चरण तेरे पेंडे वालों चलदे ने गुरु खालसा जी जेड़ा भावना दे नाल जपदा है वाहिगुरु दा नाम अकाल पुरख अंतरजामी ओहदे पापां दा हर लंघना करदे ने
1: हर हो किरपीस
0: वाहिगुरु जी हर हरने जोग हरी परमात्मा आप जी हो हाजर हो और हो करके सहायता करो और कृपा दे ईस वाहिगुरु जी कृपा दे दाते महाराज कृपंता हरियं मत तत् ज्ञान बख्शीद्या बुद्धा कुशल थानं महाराज आप जी कृपा दे मालक हो आप जी दया करके दया दे घर विच आन करके अपने सिखां नूं गल ना ला लैंदे हो ऐसी कृपा करदे हो जिथे आम असी धारणा विच सुणदे हां ऐसी कृपा करो महाराज नाम ना विसरै नाम ना विसरै महाराज एहो जी कृपा कर दिओ हां तुहाडा नाम ही ना विसरे घर विच बैठे होईए परिवार विच बैठे होईए किते भी होईए तुहाडी कृपा दा सोमा तुहाडी कृपा दा जो करिश्मा है ये वरतदा ही रवे महाराज ऐसी कृपा आप जी ने वरता देनी
1: रहाओ
0: भाई ठहराओ दे रहे ने महाराज ये वो ठहराओ है जेदा हिरदे दे विच प्रकाश करना बहुत जरूरी है जदों गुरु का प्यारा सिख सचमुच अपने हिरदे दे विच भी ठहराओ लै आवे भाई गुरु गरीब नवाज साहिब जी ओहदे मन दे जेड़े वलवले हन उहनां नूं शांत कर दिंदे ने गुरु कलगीधर साहिब जीओ रहाओ ठहराओ दे करके आम रूप विच श्रीमान संत बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी वाले जो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे विच कीर्तनियां दी सेवा निभाउंदे सन ओह अपने पावन कीर्तन तो बाद दस्या करदे सन जदों रहाओ बंद आउंदा है ना ते रहाओ बंद आ इह संकेत है भाई कि कीर्तनी संगा ने इह पावन गुरबाणी दे जिहड़ा मेन है इस नूं लै करके इहदे उपर शब्द पढ़ना है पहली सरमौर पंक्ति इह लैणी है रहाओ वाली फिर पावन गुरबाणियां दा अगे कीर्तन करना है आम इदां हुंदा है पर कई वारी गुरु के प्यारे सिख भावना दे नाल होर पंक्ति भी पढ़ लैंदे ने सो रहाओ भाई ठहराओ देना बहुत जरूरी है साडी हिरदे अंदर सहज पावन गुरबाणी दे नाल

महाराज हरि परमात्मा आप जी कृपा करो, स्वामी सर्व कला दे आप जी स्वामी हो, सो श्रेष्ठ आमी पति हो आप जी सारे जगत दे। महाराज कोई स्त्री है कोई पुरुष है सी सारे तुहाडिया जिंदड़िया हा निमाणिया हा आप जी साडे स्वामी हो, हम लाए हर सेवा महाराज हम हानू सानू कृपा करके आप जी अपनी सेवा दे विच ला लवो। सतगुरु जी तुहाडी सेवा बहुत डाढ़ी है महाराज, सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए। धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज दियां ने 12 साल धन गुरु अंगद देव साहिब जी की डाढ़ी करड़ी सेवा निभाई। भावें कोई चक्कड़ आउंदा है भावें मीह पैंदा है ते भावें कुछ भी है, शरीर बिरदा शरीर परेशानी च भी होवे, गुरदेव जी ने एक मात्र भी ढिल नहीं की। भाव गुरु कलगी धर साहिब जी ये पावन दर है जिदे महाराज जिन्हों सेवा ला देन भाई वह सर्वोत्तम गुरु का सेवक बन जाता है। साडे पंथ अंदर बड़े महान भजनीक गुरु के सेवक होए, जिन्हों विचों एक सेवक श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी होए जो कार सेवा सरहाली साहब वाले सन। मैनू उन्होंने एक बचन याद आया, बड़ा सोहना बचन है गुरमुखो, तुहानू बड़े ध्यान नाल सुनना चाहिए। कहिंदे 40 दिन अपने केसां नू गुरु का प्यारा सिख ढक करके रखे और बड़े प्रेम नाल सत्कार करे केसां दा। 40 दिन केस कोई तुहाडे केसां नू वेख ना सके, अपने केसां दी इन्नी क परवरिश करनी है। और 41वें दिन ये प्रोसीजर करन दे नाल ये भावना निभाउण दे नाल 41वें दिन तुहाडे मुख विच्चों जिहड़ा वी सुभावक बचन निकलेगा, जिवें हिंद मत विच कहिंदे ने ना सरस्वती जिहड़ी कंठ ते वरसदी है मुख ते वरसदी है, इवें तुहाडे मुख ते 8 पहर ही सरस्वती का वासा हो जाएगा। भाव अपने केसां नू बड़े भावना दे नाल सांभ करके रखना, यह महापुरख योग पुरशां दा वचन है भाई। सो गुरु गरीबनवाद जिन्हां ते दया करन भाई उन्हां नू अपनी

अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन कार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लय पहार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद भास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावह सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र।

0: सकल द्वार को चाट के गह द्वार द्वार पाएंगे किला जस गोविंदा द्वार द्वारा राज करेगा खालसा की रहना कोई सब मिलेंगे बचे चरण जो उड़की सभा मिले की कुड़ा बसा डंका बाजे बजे का नंगल कवता चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्त स्वयं भव सुभंग प्रदा सब जुगते दुकान बना सिद्धया
1: आलंग स्वरूप
0: सदांग संगे अभंग अंगुभूत देव ने तो बजे दशक बेदंगे आपने जनान गुरु गोविंद जी श्री काल पुरुष के सहाय दरबार में तेरो दरबार सचखंड वशयनन लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबार सब देवते का नमस्कार दोहरा।

नदस्तु हि पृच्छस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु वं रटस्तु वं टटस्तु वं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु।

करता करीम सोई राज कर रहीम होय दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही किसेव सब एक गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देह राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पे अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के

आगते कनू का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनू का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कूट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच पच को करेंगे भज, के तक प्रतच हो।

तेज मैं अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रूवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली पहारे भीतन लगाए हारे झापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी। त्व प्रसाद भुजंग प्रयात छंद न रागं न रंगं न रूपं न रेखं न मोहं न ग्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भ्रमं न जन्मं न जातं न मित्रं न शत्रुं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न शत्रुं न भामं लेखं वेखं जूनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपं न ही जान जाई कछु रूप रेखं कहा वासुदा को फिर कौन बेखं कहा नामदा को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं न वै न रोगं न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न भ्रमं न जन्मं न जातं द्वेखंग पेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद्वद्वयाविनाशी न जातं न बातं न रूपं न रंगे नमो आदभं।

न नेहं न गेहं सनेहं सनाथयो दंडे अमंडे प्रचंडे ब्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न वित्रे सुभूते भविखे भवाने अचित्रे न रायं न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न जोभंग भूतंग अपेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं गजो नियच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न सुखं भय निर्विखातं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न

ऋयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद अविक्तयथा विभुक्तं गच्छयाद अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परे अं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न वितरं न पुत्रं स्वरूपे।

नेह ग्रह कहु देह दुखं कहु औखदि रोग के सुख सुखं कहु देव विद्या कहु दैत बानी कहु जाच गंधर्व कि नर कहानी कहु राजसी सात की तामसी हो कहु जोग विद्या धरे तापसी हो कहु रोग रहता कहु जोग जुगतं कहु भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहु देव कन्या कहु दानवी हो कहु जाच विद्या धरे मानवी हो कहु राजसी हो कहु राज कन्या कहु श्रेष्ठ की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ भद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूप।

कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश व्याख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतंग कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेच व्याख्या कहूँ वेद रीतन कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारुडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूँ छैल शाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सद

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप द्वय नासन तुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंचित जगात करता सतीव हरता सनादासन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धनम ध्यान जय नेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह के नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं।

कवन विश्व को पुष्ट है कहां से कवन विचार पुष्ट है कवन विश्व को पुष्ट है कहो कवन विश्व को पुष्ट है कहो कहां धर्म को धर्म है कहां धर्म को धर्म है कहां चंद्र की चेष्टा लग कहां चेतन की चेष्टा कहां चेतन ने समझ में कहां कहां ज्ञान ने मन में बोलो की सोगी कवन आदर को की सोगी कहां को सूरा संदर को कहां जो को सार को रखा ज्ञान को बताओ विचार ज्ञान को विचार सरदार विपरखंड दोष प्रकाशन पुष्ट प्रारंभ दोष दोष रे जय जय बोसी जय गाते विद्य भू मंगला सुन गुण गाते मर्दन धाम ने प्रभु सुन सत्य ने मर्दन श्री धाम ने प्रभु गुण सत्य ने गाते संतरा चंद्र जुत गुण चंद्र के रंता सुर आनंद जो देवे वचन श्रवण रत अजन ती ने निर्वंती जो जन जति छड़ की धरे विद्य जय जय बोसी जय मत खरे जय मत पावे मन सुन धाम का रे मर्दन आप लोग ने मरण दोष ने दान श्री रूप निर्वाण तो ते प्रणय ने श्रवण कारण तो कारण से निहार ओम गुरु भंगण शास्त्र जमंगण पंडित गुरु कारण संत जय अष्टांग ब्रह्म संसारित निवास से दोष प्राण संत कृत तेरे निवास संत के श्री प्रभु जय सत्य तेरे नाहे अभिमति है ये तेरे जय जय जय श्री मंगल तेरे विद्या तुम से माधव तेरे वंदना स्मरण नर पुन बंदन देश में कंतन प्रेष नर बंदन मृत बसे काम रूप मारे अनंत मृत करने ते कहा वर देवा ते ते ले जाते प्रेम बने बिर सब संत रे मनमोहन सिंह काली बंडो तन तले जान चढ़ धरो श्री दल दल ने वासन पाए जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय
जाल बाजयते सत्रमतंते दुर्जाल बाजने काढ़े मतले जगवे जगवो सिगान खाते मर्दना आज जगवो सिगान खाते मर्दना अत्रियान तंगी ते बन बंगी अत्रियान तंगी तंगी ते बड़लाली बाण बंगी ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते बड़लाली ते दामनी प्रकाश से उन्नतना से जोत प्रकाश से सलेब निर्वाण से प्रकाश खंड से वर प्रकाश दुख प्रकाश खंड से तन सलेब अवस्थ बाल दबाना तन को ले मान शास्त्रान दबाना उड़ को ले जाए जन रोबन से उड़ना करे जाए आज बुनादे मगा दब को ले आपद रोबो दब रोबा दर्शन से वर दर्शन संतो दो को प्रण प्रोत्सन से सारं संतान प्रदर्श प्रदान है रे सारं सहित दो है दो है दो है दो है दो है गंजन गुमान ने अतुल प्रभा ने संत ब्रह्मान ने आदि अनुते जय जय हो श्री भक्त श्री जय जय जय भक्त श्री जय भक्त कारण शरीर के हर गए जे जो जाति के जो दिगत रे हिलाए तो जन्म में सहित जन्म में नाम दान कर मार ब्रते जन्म कर दान गुडु के नाम के बारे में के गुडु के नाम से गाते रे वीर के पूजा जय नो श्री भक्त गाते रे जन आज गौ जन आज मते रे मत तथा असुर मारण ने निवारण पछर वचन नाय घट ने बाबा मन पितृ धाम तुम श्री जमंडे बंद रक्तासुर

विचार जमती हो आप करते बसार जब तभी हो आप करते अनंत सवार हो जब हम उतने अनंत हो दर्दार दरी में तादर दुर्बल दर्दार भगवते मरता दर्याला दर्दार दुर्बुदम करते जाने इतने तो सब बेगुदम करते जाने कई उसने जिंदगी नो बना उस सब वाली उचाली जब को प्रभाव ना उस भी बजर बजाने को जा रहे वाले मुझे जीवन के लिए बना देता है मन मुट के लिए मुट पत्र पूजा एक अनंत के से सुरस सुरस जब अंदर ने पुलेट से सुरस जैसा करा है पर एक रूप सुरस के करुणा निदान कारण स्वरूप जय जय जन नहिं रघु जय जय जय जन कारण काल स्वरूप जय जय जन तेज कर पाल तब जी प्रदान कर सत नाम रूप बुद्धम काल जगत से नो पर रूप जय कम पारंग रंग नो जय ते प्रेम में जय तारक जय जय मन ही जब तन दुरंत जय रे जब ने दिन जग नो दुरंत जय हो न जनाए जय पैर जान दीना नो जय करता अवतार दीना तो एक गोट दिन गोट अपन हाथ करे कई बोल रे इंद्रिया दुबार करे दे दुर व्यास सब दुनिया नो जय रे किंदे दाहत है तो दुखन का दर्द जन के बल है दर्द दुख है का दर्द दर्द के जन के बल है ना पूर्ण है प्रेम के पंडित से मार है अमर पूर्ण नौकरी ना पाए सके भद में अब वेद पदे वे सब जान रे रोज वे राज वे को पद राज करो रे वाही रोज में डर रहा है तो तो की अब के मुझ पूरा ना भजन का बहुत पीठ भगवान बना रे दिन बाद देव पर पे हमारे बनावे रे को परम देव पर में आए ने बनावे वेद पुराण जगत रे प्राण हस्ते पद वेद कर हाथ ना आए पूर्ण से हम के मारो हाथ पर से के पूरी ब्रह्मा पर पावे आज पर काम क्रोध न लोभ न मोह न रोग रास रोग न दुख न वर है देह रूप में सुने न सो न बने है व्यक्ति के है ज्ञान बगे ज्ञान को दे जमीन बदे बदे मार को न है कहे को डोल दे जन तुम रे सन दन से को डोल है हरे तो तुम दर से परम आप दे है रोग रोग यार सो बंदे जल जो बंदे वो बात बचाओ बंदे जो बंदे एक चला बहुत कहा बताओ इतना एक न लग न पावे तब उतना एक न है अपनों का दर्द कर पाप सबको है न बेड न पावे और की बात को हक में तो तो आसो बेड नहीं कब बेड बीच का आवे तो बेड जाए छोड़ जाए जो जान वाले बापे दर्द तो जाए तो जान वाले बोमा क्या तो बता कर जाए तो जाए छोड़ जाए मस्त कर सुनने आवे तो जान से बेड नहीं पार परवा हम को नहीं सही ने हम बेड पर प्रभाव हम को जो के सब ही खुद ही ना सुरहार पर हर हर नारद से चतुरान से रोमनार से तब भूमि का हो पेड़ दिन देर से चित मुख के सब हार पेड़ दिन करते पर नंद आयो के सब हार आए सके ने के बार आयो मां से सनात से नंद आयो नारद सरो से को मन में दिन को मन सरो से को हार को वेद पुराण जते कुरान वेद रे को सब ने बचे बारे में न पाए सके सब ने फिर सब के पे ने जात को रे को के धरा ना रूप न रे हर रंग न साख ना रूप रूप संगते हर या ना सब का दे ते दे के पे अत्र के चलया चित छत्र
के धरैया जत धरैया करै छलैया मां के सतैया छै साल है तान के मां के मां मां मां लगे बढ़ैया अब सान के तमन जान के जैया मजा लान के अंत बढ़िया जो जगे तैया हो विरुद्ध के तैया मजा पे के जैया मां के मान नहीं अपने मां बुद्ध के ज्ञान हम जंग मां मां को पता के दम कर दे को कर दम के मां तो ना के काल हम दे काल मां के काल मां काल हम के काल है पूर्वी न पार बाबा हैं गुलाब हिमालय जावे पूरा कर दे जिन गुलाब मिले रे न गुबन कर दे जो को था दे बिन सा मन के जो बंदो यार सब के यार धी यार दे के रंदे मार सब के यार भी पर के फिर हम के माने अंधारे को रे सदा ने पर में के पंच में बतुर ने जग राम चन मर चम के ले दे मार सो तब सा कर दे दे बत ले के अंदर सो तब सा बंदे दे बंदे के बंदे के फिर हम के फिर बाबा ले बंदे के दे वाले दे रे फिर हम का ले है के रो के रो है लग मार दे तेरे मंगल रो तेरे बगल से बंदे ले बाबा पुंज को मिला पर है चाहे पुत्र ने बाप पुंज को मिला है भूखा गुण गावे छे मशीन के जिस ने अपन दे बाबे दे माले दो के दे जिस ने दलत बचाए दे ना तो दे दे दे तो लड़न ना प्रताप पायो सर बदन ना ब्रह्म पूरा तो पहला सर है सदा पर दे उड़ते बदन को सुरे सदा नवारे को दे मैं सदा को सारे को आवे सदा की हम दे सर बदन हमने रोकी रे सा करू हम पर बिना ना और का ऊपर रात को सदा की ने आई तो है दिन सा पर ये ना पार दे जब मैं पापा की मेरे पाए तो दार है ना पार कर लिया दे रहा है खुदा की मैं पार पर बच पाओ चाहती है तो का की चंगा सुंदर स्वरूप है कि भूपन भूपन करो प्रभु करो के भाग भूपन पत्र को प्रमार को है दिन रूप को दमन है को नहीं मन को गार के नहीं साधन को रचनी घट पन को पहार रहा है को अच्छा को सिद्ध को स्वरूप है कि बुद्ध को विभूत है को स्वरूप को भूप है कि विभूत है कि सिद्ध को काम को बने दाए कि भूप को देहदा है बनी मन कर लगो कि तेज को प्रकाशनी है बनता है काज मुंद का सन का सत्रण के साल हाल के मंत्रण का उपन का सत्र वृद्ध सा के भाग में करण जो को को जग रज दते जो अंश को तंत्र जो एक मुख नहीं को में करते के पूर्ण प्रकाश विश्व को वरण है कया पदा को हरण है के सुख को करण है अपने तेज को प्रकाश है को पाई या न पाई दो प्रकार है वो पारी है को की जत विचार सो विचार को ने वर्ष है विचार सो विचार गोला हम लगा है बसी हल बिना पूर बिना बार बसे हल बिना नासर है देवन को दे साथ दे नाम कर दे देवन को दे नाम दे देव को दे बिना सिंधन है बिना दे बिना सी है अंजन भी नहीं निरंजन प्रभी नहीं अंजन भी नहीं निरंजन प्रभी अंजन में जाल के देवन है देव यजन दे जाल के देव यजन भूम के मन जाए भूम के जाए मन बालू के भूम के जाए भूम के जाए मन जो भूम को जो जाए धर दिया धर मन जाल के काम जो मन के धर यजन के बुद्ध के वार है नस्त धर के सब कुछ के काल है कुचाल के काल है कुचाल के चीर के सिचिरावत चास के सिचताने के चपाकर के सिचाबका दर्द के बोल के अंतर से सिहार मुमही के रूसी हुसैना बसदी संगी के हरुधार के अलिसा हुसैन बाबुल के बारा सिर पर लाओ के रूपा के सिरामा को सोरा को सोरंगर बाद अंतिक रहा ही जुल के चपाका बंदे ने कोट जी जुल से नगवर की ने देख कोटा जी रही मालदी बोल के अपने तरी मालदी बोल के फटक सिकला सकमा उगड़
Thank you.

नर सखियो रे आपे पर सुपयाम राम सोलियाम राम सतगुरु सज्जन मिलया नानक नाम लगनाई मलय तन मन जीव वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी फतेह वाहेगुरु जी की फतेह थाली तू समरथ हल उन समरथ को देना है उठ तेरी रख उठ अग्नि के धर्मा है सुन कर जम के तू सुन कर जम तेरे चर जाना है भाव जब जम आसगा हो भाव जब दिन आसगा रखा है शक्ति जन को लगाई प्यास अमृत से आस अमृत से हो पुन गुण को बंदला है सब सरनों के पाल सब सरनों के पाल बिठा कोई न जाए जिबता वे उपदिल जाए सालों के सरवणी सुनना गुर नाव सतगुर से रत्या दरगह पाई ठाव कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे जग मह

मत ऊची मत पत का राखा आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह।

रथ जतै का जोर गैरथ वाह, द्वापर रथ पै का सत गैरथ वाह, कलयुग रथ गण का कूड़ गैरथ वाह।